0: शब रोज
1: गश्तम तरहवा
0: कर दे
1: बनी खया
0: गाहे न देखी कर करदम मम इनी हैवा
1: बद भक्त हम चो बकील दाविल।

बच्चे प्यारे होंदे हन, अकाल पुरख वाहेगुरु ने अपने भगत प्यारे हन भाई। हुण मोटे मोटे जंजीरां दे विच कबीर नूं जकड़ के ना आ वेखदियां हुण इहनूं कौन बचाउंदा है। ते गंगा दे विच जाके कबीर जी नूं डबो दिता गया। इतिहास विच लिखिया है कि जेड़े डबोण लई आए सन ना बेड़े ते चढ़ के, ओ जालम बादशाह दे कर्मचारी कबीर जी नूं दबो के चले गए। आप थोड़े ही उरे होए सन के सारा बेड़ा ही डुब गया, पर ओ रब दे प्यारे नूं मारन वाले आप मर गए। ते कबीर जी आप कहिंदे हन कि गंग गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर खड़े कबीर, गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर। जदों गंगा दियां लहरां विच मैनू सुटिया गया, मेरियां जंजीरां टुट गईयां, ते मृगशाला परों आ रही सी टुटदी। असी प्यार दे नाल रब दे रंग विच रते होए उस मृगशाला ते बैठे बैठ गए। उस मृगशाला ते अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन आरंभ कर दिता। अकाल पुरख वाहिगुरु की ऐसी नेत हुई कि उस मृगशाला ने सानू किनारे ते ला दिता। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। कबीर जी आप हवाला देंदे हैं कि किवें अकाल पुरख

संसार ते आके प्यार ही वंडिया है, पर संसार ने सदा ही रब दे प्यारियां नू दुख ही वंडिया है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हंकारी पंडिया ने जदों देश परदेशा विच जाके हुक्मनामे भेज दिते भाई बड़ा यज्ञ कर रहा है कबीर, ता अकाल पुरख वाहिगुरु आप आके फिर सारिया नू भोजन छकाया, अपने भगत की रख्या की, अज भी रख्या कर रहे। कबीर जी कहंदे ने जदों सानू जंजीरां विच जकड़ के गंगा दी लहर विच दबो दिता गया फिर सानू डर नहीं लग्या, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु अंग संग है, फिर डर कादा भाई ना। ओए मरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसे मन माहे, जिन्हां दे हिरदे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम है ओ डरदे नहीं भाई, अंग संग हन। निर्भो दाता हर जीव मेरे नाल, निर्भो दाता अकाल पुरख जिन्हां दे हिरदे विच वस गया है उन्हां नूं भाई किस दा डर है। जिवें कबीर जी कहंदे हन मन ना डिगे तन काहे को डराए।

बिना सिमरन तो तेरा जीवन किसे भी लेखे नहीं। सेवा और सिमरन तो बिना इस तरह जीवन है, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बतारा। भाई साहब गुरदास जी सिख पंथ दे वेद व्यास कहंदे हन, त्रिग सेवा बिन हाथ पैर होर निफल करनी।

उसने इस शरीर नू सुंघिया ते वापस चला गया। क्योंकि कई दिनों तो भुखा शी बुग्याड़ फिर आया, हाथ सुंगे, मस्तक सुंगया, पैर सुंगे ते फिर वापस तुर गया।

आ मृतक शरीर पिया है। बाघ ने पहला आके इसनु सुंगिया चला गया, फिर इसका मस्तक सुंगिया, हाथ सुंगे, कदम सुंगे, फिर वापस चला गया। जापदा सी कई दिना तो भूखा है, पर उसने अपनी खुराक वेख के इसनु भक्षण क्यों नहीं कीता? धन गुरु नानक पातशाह कहणगे, मरदानिया आ कीर्तन दी रब्बी बाणी दी आवाज इसके कन्ना तक पहुंची है और इसका मन निर्मल हो गया, हिरदा स्वच्छ हो गया। इसने जिस मृतक शरीर नु सुंघया न, इसलिए सुंघया कि इसने कोई चंगा कर्म भी कीता, लेकिन कोई नहीं कीता। फिर मन विच आया, हो सकता है कदे अपने गुरु अगे इसने शीश निवाया होवे, शीश सुंगिया, हो सकता है इसने कदी सेवा करके अपने हाथ सफल कीते होन, हो सकता है कदी इसने कदम सतगुरां वल गए होन, गुरु वल गए होन। पर मर्दानिया इसने कदम सदा माड़े पासे जांदे ने, इसने हाथ सेवा तो बिना इसका मस्तक कदे गुरु दे चरणा ते नहीं चुकिया, जिस करके बग्याड़ नू ज्ञान हो गया कि जे मैं इस पुरुष दा मांस खा लिया तो मैं भी कुंभी नरक दा भागी बन जावांगा। सो प्यारी सात संगत, मनुष्या जन्म उन्हां दा ही सफल है जिन्हां ने भाई सेवा और सिमरन करके अपना

जीवन आनंदमय हो गया, जिस जीवन नु कोई डर सी ना भाई कोई धन चुरा ना लवे, आज सुख दी नींद सौंदा है, हर वेले सिमरन करदा है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी नु आके कहन लगा, महाराज हुण कोई होर सेवा बख्शो। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सूई दिती, आख्या भाई दुनी चंद आ साडी सूई रख लै अमानत।

रात दिन कर पिया मजूरियां, जितनियां मर्जी हन तू जिम्मेवारी दियां पंडा अपने सिर ते रख लै, अंत वेले तेरी किसे ने

ऊहां संग तोसा जै पेंडे में अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा बिना सिमरन तो जितने भी तेरे कम हन ओ किसे कम नहीं आने पाई सिमरन कर सेवा कर परोपकार कर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सानू ए राज और जोग बख्शे आख्या तू चंगा गृहस्थी भी होवे चंगा तनी भी होवे पर माया विच रहंदिया होया माया तो उदास रवे माया तो नरलेप रवे ता तेरा संसार ते आना सफल है जे तू माया तू नरलेप है ग्रस्त विच रहंदिया सेवा सिमरन परपकार अमृत वेले जाग के मालिक दा जस कर।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर

नसीब हो गई गुरु, उन्होंने सब कुछ मिल गया। क्योंकि संत की धूल मिटे अघ कोट, करोड़ा ही जन्मां दे पाप मिट जांदे हन जे चरण धूड़ी प्राप्त हो जावे।

तोर मस्तक हर प्रभु लिखिया गुरु नानक मिलिया। भई गुरु सिखां दे चरणां दी जपन वालियां दे चरणां दी तोड़ी, गंगा जमुना सुरस्ती गोदावरी ते करें उद्दम तूर साधु।

बहुत सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरण विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडण तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान कर जल्दी सब जमी दिस आई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई कर दे, जगत जलंधा रख ले अपनी कृपा दा, जित द्वार है उपरे तित है लेओ बार, जिवें बचदा ही बचा। इन्हां तपदियां सड़दियां नूं जिवें शांति दे सकना मेरे साहिब उवें ही दे। जिस राह तो जिस दर तो कोई तेरे नाल जुड़दा है जोड़दा है। साहिब टुटे हुए मनुख नूं, बिखरे हुए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप भी सुखी होवे ते आले दुआले नूं भी सुख बने। इत्थे भी कहिंदे ना, आप ही सुख पा, होरनां नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख निध नाम, नाम वो खजाना है जिस सारे सुख ने। ते जिन्होंने इस सुख नूं प्राप्त करने का यतन किया है उन्होंने जो कितने किनका मात्र भी इसका सची मुची प्राप्त हो गया, थोड़ा जिहा भी उन्होंने रस आ गया। साहब कहते हैं मैं उसकी वडियाई नहीं दस सकता, संकल्प भी बख्शे है, आप संकल्प करिया करिए, मन में एक इच्छा करिया करिए, आशा करिया करिए। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, काल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन विच शरीर विच वरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे। सिमरों जात विसुंभर एक है, वो जरा विश्व दा मालक वाहिगुरु अकाल पुरख है, उसनू याद करा, उसनू चेते करा, उसनू जपा।